0: अबे ऐसा लगता है जैसे कोई नौकर अपनी मालकिन को चिट्ठी लिखवा रहा। अबे नाम क्या है उसका?
1: नाम तो मैंने उसका कभी लिया नहीं।
0: ओ
1: तू मुझे उसका नौकरी समझ लेना।
0: यार तूने आज लैला मजनू शरीफ फराज सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। खैर मैं लिखता हूँ।
1: प्यारी
2: नहीं नहीं
1: प्यारी नहीं
0: प्यारी नहीं तो मेरी अपनी

0: अच्छा बाय। किसने भेजी?
1: वो जो सामने साहब रहते हैं ना, उन्होंने दी।
0: अच्छा मेरी अपनी। कई बार कोशिश की कि दिल की बात जुबां पर लाऊं, आपके सामने आया भी, मगर आपका नमकवार होते हुए जुरत नहीं कर सका। दिल की धड़कनें तेज हो गई और जबान ने साथ न दिया।